अंजलि हमारी तरफ देखो। पति पत्नी ना सही, हम दोस्त बन के तो रह सकते हैं, और दोस्ती का पहला असूल ये होता है बराबरी का हक, और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो, और आप भी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे हमें दुख पहुंचे।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनः मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामैया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद

0: का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता बंधु सुनुले आपण मैंने हिंदी रे संवाद रिले कर प्रचार करलु आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र वर्तमान आज अनुचिंता जीवन रे सफलता पाइबा को चाहूथिले समस्या को भय करबा नहे सेथिरु शिखिबा को आरंभ करबा उचित

देव उपासनारे भगवान सूर्यंकर विशिष्ट स्थान रहिछे। भगवान सूर्यंकर प्रत्यक्ष दर्शन प्रतिदिन आमको अनुभूत होइथाय। सेही अनुमानरे गोटिए कथा ही कहुजाए, से हेउछन्ति प्रत्यक्ष देवता। आम समस्तंक उपरे तांकर अनेक उपकार मध्य रहिछे। प्रभु आदित्यंकर उदयर हेथाए सकालर आरंभ, अस्तरे हुए रातिर आरंभ। ए सृष्टिरे दिन रातिर संरचना प्रभु आदित्यंक करुणारु ही हेथाए। आसंतु प्रभु सूर्य देवतांकु प्रणाम करि प्रथम प्रणाम जणै आरंभ करिबा आजर ए नुआ दिनकु।

देवंक द्वारा प्रतिष्ठित तथा देवंकर हितकारक विश्वर शुद्ध निर्मल चक्षु स्वरूप प्रभु सूर्य देवता प्रत्येक दिन पूर्व दिगरे उदय ही आमको तांक करुणारे भिजेई दियंती। देव मंत्र मानंकरे सूर्य देवतांको जगतर अभिन्न आत्मा बोली कहा जायछि। भगवान सूर्यंकर दिव्य महिमार विस्तृत वर्णन वेद पुराणरे मध्य रहिछि। हे विश्वर पोषणकारी एकाकी गमनकारी संसारर नियामक प्रजापति पुत्र सूर्य देव आपणंक किरण को सदा सर्वदा ए जीव जगत को प्रदान करुथांतु। सृष्टिर संपन्न फल आउ रसर परिपाक परिपालन तथा सेगुड़िकर दृढ़ता सूर्य देवतांक किरण द्वारा ही संभव हेथाय। रसगुड़िकर आदान द्वारा ही सूर्य देवतांको आदित्य कहुजाए। से अदितिंक पुत्र रूपरे मध्य उत्पन्न होइछन्ति। तेणु भगवान भास्कर जीव जगतर समस्त जीवंकर कर्मर साखी प्रत्यक्ष देवंकर उपरि भगवान सूर्य समस्त जगतर परम आराध्य।

म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आपण मानक स्वागत मु आपण को कोयल छी आपण मानक साथी रे वर्तमान स्टूडियो खडी रे समय सकाळ 6:50 मिनिट हे सारी छी श्रोता बंधु आज रो दिन रे बहुत ही खास हम समस्त को पाई कारण आज हेउ छी रविवार रविवार हेउ छी आराम खुशी आ नुआ आरंभ पाई सब ठारो भलो दिन तनो आज रो दिन रे हम को किछि छोटो छोटो कथा को मने रखिबा को पड़िबो आराम आ फ्रेश रहिबा को पड़िबो सप्ताहर काम परे आज दिन टिकु आराम पाई निहाती टिके समय बाहर करंतु आउ रखंतु तबे आज रो पानी पाक विषय रे जदि कहिबे ताहाले आज कटक भुवनेश्वर एवं आखो पाख अंचल रे प्राय तापमात्रा सर्वाधिक तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस रो 38 डिग्री सेल्सियस रही पारे एवं राति रे प्राय 25 डिग्री सेल्सियस रो 28 डिग्री सेल्सियस रही पारे किछि अंचल रे हल्का फुल्का वर्षा कि झड़ वज्रपात हबार मध्य संभावना रहुछि तबे बाहर को जिबा बळे पानी पियंतु वज्रपात समय रे सावधान रहंतु आ तीव्र धूपरु रक्षा पई छत्ता कैप ए सब व्यवहार करंतु आउ गोटे कथा कहिबा पई चाहेबे संध्या बळे हल्का फुल्का वर्षा बा वज्रपात हेबार संभावना अछि आज 20 रु 40 किलोमीटर घंटा प्रति पवन बही पारे एवं जेतेबेले वर्षा आसीबो से समय रे टिका अधिक मध्य हे पारे दिन रे हल्का फुल्का गरम रही पारे किंतु संध्या रे जो पवन बहिबो आ झड़ वर्षा रे संभावना अछि तेनु निहाती पागटा पूरा बदल जिवो गतकाले संध्या रे भी बहुत वर्षा हेतिला आ सेई वर्षा को नेकी पाग पूरा बदल जाइछि बहुत सुंदर पाग हे जाइछि खरारु बंचिबा को छता क्याप व्यवहार करबा को भूलिबेनि प्रचुर मात्रा रे पानी पीबा को भूलिबेनि आ खुल्ला जगह रे बेसी समय रुहंतुनि जेते बळे वर्षा पवन की वज्रपात होउछि आपण टिके सेफ प्लेस रे रुहंतु आज जेहेतु रविवार अछि आपण मानकर अनेक गुडीए सब प्लानिंग थिबो आज इक्वाडे जिबे बुलाबुली करिवे जति दिन रे हल्का फुल्का खरा आपण देखुछन्ति निहाती आपणकर बुलाबुली काम सारदियन त काहेकि ना इवनिंग टाइम रे वर्षा हबार संभावना भी रहउछि आ वर्षा हेगला माने घर बाहर के आपण जाई परिबेनि आ जदि भी बाहरि थिबे ताहाले आसीबा को माने फेरिबा को आपण को असुविधा हे जिवो आज गोटे बहुत ही सुंदर दिन आज हेउछि मे मास 3 तारीख एवं आज दिन टी आम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे माने विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस भाव में पालन करुचे सहित वर्ल्ड लाफ्टर डे भाव में आज दिन टी पालन करा जाउछि आज अनेक गुड़िए किछि खास कथा रहिथिबो आपणक जीवन रे जदि कहार जन्मदिन रहिछि कहार मैरेज एनिवर्सरी रहिछि ताहाले मो तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा आपण मानंकु आजिर एई खास दिनटी आपणक पई आहुरी भी खास हो मे मास 3 तारीख रे आम भारत रे विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस को पालन करा जाउछि एवं एई दिनटी यूनाइटेड नेशन द्वारा पालन करा जाउछि संवाद माध्यम रे स्वाधीनता आ मत प्रकाश रो अधिकार को सम्मान करबा पई आज रो एई दिन रो बहुत गुरुत्व रहिछि रविवार जेहेतु अछि तेनु आपण माने नुवा किछि सिखिबा को चेष्टा करंतु पुस्तक पढ़ंतु कि बा नुआ दक्षता सिखंतु आज टिके टाइम आपन को मिल जिवो परिवार सहित समय कटांतु स्वास्थ्य रो ध्यान रखंतु प्रत्येक दिन रविवार हे थौ कि सोमवार हे थौ सप्ताह जेकोसी वार हे थौ निज स्वास्थ्य रे ध्यान निश्चय रखंतु सुस्थ खाद्य खांतु हल्का फुल्का व्यायाम बा वॉक मॉर्निंग वॉक जो मॉर्निंग वॉक करंतु आपन को पाई बहुत भलो रहिबो आउ जदि आपणक बाड़ी बगीचा रहिछि घास गालीचा अछि खाली पात्र टिके चालंतु आपणक बहुत

0: भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति. विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति. आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम अष्टस्तोभिः पराजितम्. हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याहने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखीकरिष्यति. तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखीकरिष्यति. इति वार्ताः.
1: ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଯାହାକୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ.

श्रोता बंधु शुणुछन्ति आपण माने 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक गोटे नुआ सकाळ आसीछे नुआ प्रेरणा नुआ उत्स ए सबु नै आसीछे आम पाई आउ नुआ प्रेरणा सहित आमे निज जीवनर आज दिन टी आरंभ करिबा तेबे आज दिन कार्यक्रम सूचना रही आपण मानक वर्तमान आज शुणिपारे सकाळ 7:10 रे आमर स्वास्थ्य कार्यक्रम एथिरे आजर विषय रही हसंतु सुस्थ रुहंतु आलोचना करिबे डॉक्टर नित्यानंद स्वाई शुभ सकाळ कार्यक्रम शुणिपारे आपण माने सकाळ 7:25 रे मॉर्निंग मेलोडी रही सकाळ 8:30 रे सकाळ 9:00 शुणिबे डायल इन लाइव चिटचाट प्रोग्राम एथिरे निर्धारित विषय रे आपण माने फोन कॉल माध्यम रे निजर मत रखि परिबे रेनबो एसएमएस कार्यक्रम शुणिबे सकाळ 10:00 रे दिन 11:00 रे शुणिबे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 किछि कथा किछि गीत कार्यक्रम शुणिपारे अपराह्न 12:00 रे दिन 1:10 रे शुणिबे आज चर्चा रे कार्यक्रम एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मत व्हाट्सएप बा एसएमएस माध्यम रे आपण माने शेयर करि परिबे पुरुणा ओडिया कथा चित्र गीत शुणिबे दिन 2:45 रे अपराह्न 3:00 रे शुणिबे मो देश सुरीला आफ्टरनून शुणिबे अपराह्न 4:00 रे 4:50 रे शुणिबे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे डायल इन लाइव चिटचाट कार्यक्रम पुणी थरे आपण माने शुणिपारे संध्या 5:02 रे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीरामचरित मानसर षष्ठ अध्याय शुणिबे संध्या 6:10 रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणिबे संध्या 6:30 रे संध्या 7:00 शुणिबे प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे संध्या आसर शुणिबे 7:25 रे राति 8:02 रे शुणिबे गीतरे मितरे अभला स्मृति कार्यक्रम आपण मानक पई रहिछि राति 9:15 रे राति 10:00 रहिछि रेनबो एसएमएस ये थिला आज दिन कार्यक्रम सूचना वर्तमान आपण मानक पई हमरो परवर्ती कार्यक्रम किंतु सकाळ 7:05 रे आपण माने सुनि परिबे आंचलिक संवाद रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्ररो वर्तमान आपण मानक पई किछि विज्ञापन आकाशवाणी कटक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में

0: अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
1: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के LPG टैंकर MT सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन LPG है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली

0: कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के

0: करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
1: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों के पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ीं। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: श्रोता बंधु आपण माने ट्यून करिछंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडे दिल से दिल तक कोयला छी आपण मानक साथी वर्तमान कथावार्ता चलछी आपणकर मो भितरे आ आज जेहेतु विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस तेणु आमे कथा होछि न्यूज पेपर रो बा टीवी रो बा सोशल मीडिया रो न्यूज रो आपणको जीवन रे केते माने गुरुत्व रहिछि केते विशेषत्व रहिछि आपण कोडा देखिबा को पसंद करंती कोडा आपणको पई सबुठारु परफेक्ट बोली आपण भावंती देखिबा के अछंती वर्तमान मोर बंधु फोन लाइन रे हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार की कहते
1: शुभ सकाळ मां सारंगा सुतु सब परिवार भले तंत कोइल भूमि मु जवसिंहपुर मेडिकल कॉलोनी टुनायना को जाया
0: नमस्कार किमति अछंती
1: आपणंगा वलपाशा साथी आसेतरे मु बहुत बडरे अछि आशा रे मां सा आपण निश्चिंत आपण परिवार को बडरे खुशी रखो
0: आउ आपणक सपड वर्षा वर्षा आइछि कि नै
1: हां काली राती जाक वर्षा माने काली 8 जाय वर्षा आला आ इंग्लिश मेघवा पागो पूरा गोरै कि रखिछि मेघ हे परे हो
0: पागो एते सुंदर हि जाइछि त पूरा एन्जॉय करथबे ना रज्जो पागोटा देइछि आ

0: अखबार जहाँ 10 रुपया एक पीस बिकती है, शाम को वो रद्दी के भाव में 10 रुपया किलो बिकती है। नमस्कार कोयल मैम जी, मु प्रशांत राजंश कटक रु कहली।
1: प्रशांत केमती अच्छा
0: मैम? बहुत भल अच्छी, आपण उच्चारण जो आत्मीयता अच्छी ता द्वारा आहरी बहुत आनंद लगुच मैम।
1: मत भी बहुत खुशी लगे, बहुत दिन पर कल कले। बाकी आपण को कौन भल लगे, न्यूज पेपर पढ़ा को भल लगे ना टीवी देखा को भल लगे?
0: जे न्यूज पेपर आमको ए दिन से सिखा है जे आम जे सकाळ रे जे 10 टका पीस बिक्री हुए से संध्या बेल को 10 टका किलो बिक्री हुए, अर्थात तार माने हो जे समय रे सत पूज निज को सही हिसाब रे निज को गढ़ी तोलीबा।
1: अच्छा त माने आपण एबे
0: से हिसाब रे आपण जदि गढ़ी तोलीबे ताले आपण घर भी वैल्यू रहिबो।
1: आपण एबे तने रेडियो
0: रेडियो होची सबटु ये बहुत सुंदर जो ताजर जो सबुट आमर पुरातन भाषा भितर जो संस्कृत रे समाचार असे सेटा ताद्र किछि माने मोर यात्रा टा सहज हो जाए अब शिक्षा को किछि दिन से मिले।
1: ताहले अपन को कोथरे न्यूज माने भलो लागे, रेडियो न्यूज पेपर ना टीवी?
0: ना मैम न्यूज पेपर तो देखंतु न्यूज पेपर कोन अछि ना ट्रैवलिंग न्यूज पेपर देखि देखि ट्रैवलिंग का सहज हो जाए यात्रा समय रेडियो हूँ मानते कौन गोटे कि शिखबार आपड़े प्रति ये कि शिखबार अच्छी जिन से अनुसरण करे
1: बहुत भल लगे
0: संस्कृत समाचार शुणे द्वारा कि संस्कृत भाषा किसी जानवा को भी मिल जाए।
1: हाँ बहुत बढ़िया कथा कहले, आपको संस्कृत रे संवाद भल लगे। थैंक यू सो मच आप कल कले शेयर कले। रही नमस्कार
0: आपको शब्द आज्ञा वास्तविक बहुत आत्मीयता,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपणकर भल पाइबा एमती हृदय रे थाउ, आपण एते भल पाउचंती सेति पई आपणको सब भल लागुछि मो कथा।
0: नमस्कार आज्ञा,
1: नमस्कार नमस्कार। श्रोता बंधु कॉल करंतु 0671-230-315 नंबर रे आपणको सहित कथा है कि मते बहुत भल लागुछि। काहे कि कहिले एक तो रविवार सकाळ सकाळ आसुछि काम करिया को पडुछि, किंतु ता भीतर भी जो आप कथा ही जाए ना पूरा मूड रिफ्रेश हो जाए, पूरा बढ़िया लगे मत। आते प्रशंसा कर दिखती आ हा हा मैंने मौका चौका माला भाया लगे, मत बहुत भल लगे। मुझे जानी पारे स्टूडियो भीतर बसिक कि आपत भल पाती रेडियो को आते भल पाती आम मान को। आ गए कल भी आसी कल टे नहीं जावा बर्तमान। हेलो
2: मैडम नमस्कार, गीता जगत सिंहपुर।
1: नमस्कार गीता मैडम, केमती अछंती?
2: बढ़िया छी।
1: अच्छा कौन सकाळ
2: केमती अछंती?
1: मु भी बढ़िया छी। आ कौन सकाळ खियाई छी?
2: सकाळ खियाई छी चा खियाई छी परटा खियाई छी।
1: मु पाटी रे तो पानी गोललानी सुनी कि मु स्टूडियो रे सुखिला सुखिला बसी छी।
2: हां आ हम तो चा हेले हे गला।
1: ताहले
2: चा
1: संगे कौन खांती? रातिर रुटी सकाळ को चीनी पानी रे गोळे की खाई चंती, माने चीनी पानी लगे खाई चंती? मु खाई जी छुआ बळे,
2: किंतु मु खाइबी,
1: मु छुआ बळे खाई छी, बहुत टेस्टी लागे, किंतु एबे जम्मा न भल लागुनी आउ किछि कथा नै।
2: छुआ आलिया कथा किछि किछि असंती अमूल पानी रे भी खांती, खीर रे बुडे कि खांती।
1: हाँ गीता मैडम, आपण को न्यूज पेपर रे न्यूज पढ़ा को भल लगे ना आपण को टीवी रे देखा को भल लगे ना रेडियो रे सुनिबा को भल लगे, केमती भल लगे आपन को?
2: मैडम देखो तो मो कथा मु कह मु सखाळ उठे मो सखाळ 4:00 रे मोर रेडियो लागि जे रेडियो रे वंदना फंदना सब दिए सेटा बाजु थाय ता पर तो 7:00 हम घर को 3-4 पेपर आसे टेबल पे छु आइ थाय आडे
1: 3-4 पेपर एकथरे
2: आ गया
1: बाबा
2: रे प्रमेय
1: बाबा सब पेपर मगी दियन दिने कोन
2: आगे आमर जन सरकार अच्छा आनी दे
1: जाते पेपर कहीं मगा गोटे पेपर रे कौन हूँ
2: सब मैडम आम सब सब प्रकार पेपर सब प्रकार जो ये गुडा बही गुडाक संसार धरित्री
1: बढ़िया बढ़िया कथा कहले। तापरे कौन हुए 7:30 बेल को जेतेले पेपर आजे
2: बासव तापरे पेपर टिके टिके सेठी बसि चाट सब कोन को पेपर ता खोला है के पढा उठबो आरे जे रेडियो बाजु थबो तापरे 7:15 तले न्यूज जे से सुना हबो आंचलिक संवाद ता मते बेसी भल लागे।
1: अच्छा
2: तापरे आपन को तो से रेडियो लागि छै जानकी सबले पई सेटा लागि छै एइले भी लागि छी

श्रोता बंधु आज परवर्ती मेसेज टी रेनबो एसएमएस कार्यक्रम अच्छी रमेश चंद्र साहू और कुमा भापुर ढेंकानाल लिखिंट ओडिया एल्बम ना टी मोर बुलबुल टाइटल संग शुणापी चाहती

रेनबो एसएमएस कार्यक्रम आपने शुणु ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आपल अच्छे आपथी आज परवर्त मेसेज टी लिखुं टुकु प्रधान टिकी मिकी टुकुना पात्र मणियाबंध बड़म्बारू शुणापी चाहती ओडिया आलबम हे प्रिय तुम्हारो टाइटल सॉन्ग

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करते हैं उनकी बातों से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूं सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।

0: इंडिया में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का, आप डीडी हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है या गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
0: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर, अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
4: हमारी जो नीतियाँ बननी है
0: जी,
4: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
0: जी।
4: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
0: जी,
4: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी, उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई। उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना होती रही
0: जी।
4: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ
0: जी,
4: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सबके जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं, उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है,
0: जी।

0: से जहां पे लोग रहते हैं उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग और पानी की सुविधा किस तरीके की है। 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट्स इकट्ठी करते हैं
1: जी,
0: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इनुमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पड़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है
1: जी,
0: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे
1: जी,
0: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का
1: जी। मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था, अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है तो सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी, जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में
0: जी।
1: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी, जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं, इस बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
2: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी
1: जी।
2: जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ही ये शुरू हो गई थी
1: जी।
2: और ये जनगणना जो होती है ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी
1: जी।
2: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से री नोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, इंडियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है
1: जी।
2: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको री नोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं और अभी सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। और लगभग इसमें, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो 50-55 हजार से भी ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में
1: जी। तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है
0: जी। तो मुसाफिर हूँ यारो
1: जी,
0: हाँ
1: ये गाना पसंद है आपको? ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगण

0: गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो है वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है। तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी, इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं
0: जी।
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं
0: जी।
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9 हजार सुपरवाइजर लगाए हैं
0: जी।
1: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो इनोमिनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमिनेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम है या डीएम है उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
0: जी,
1: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहाँ पर
0: जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
1: आई कार्ड
0: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
1: सरकारी कर्मचारी हैं,
0: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
1: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
0: जी।
1: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमिनेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
0: जी। तो जितेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डी फैक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
0: जी।
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने वाले लोग और जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में, अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए
0: जी।
2: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं
0: जी।
2: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है
0: जी।
2: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को पूछेंगे और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे
0: जी।
2: और ज्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है
0: जी।
2: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी

0: पे गिना जाए
1: जी।
0: और इसके पीछे एक खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे
1: जी।
0: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज कर रहे हैं। तो अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए
1: जी।
0: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारत वर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही प्रक्रिया।
0: जी जी जी, ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है।
1: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: हाँ जरूरी है। सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है
1: जी।
2: वो सही जानकारी दे
1: जी,
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए
1: जी। और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहां पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा
1: जी।
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा
1: जी, जो जहाँ रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली
1: वहीं पर होनी
2: चाहिए। सामान्यता जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए
1: जी। जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं। ऐसे में अगर जनगणना में किराए दारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है? उन्हें डरना चाहिए क्या इस बात से?
2: नहीं, जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
1: जी,
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है
1: जी। यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते,
2: उसके आधार पर नहीं कर सकते,
1: उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं जी। मैं अब जितेंद्र जी, आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
0: मेरा पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता
1: जी, तो आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारी जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है, आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, और दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं, स्वगणना, उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम एमसीडी एरिया का ले लें, तो एमसीडी एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना व सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इन्यूमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी आईडी दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इन्यूमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
0: जी,
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इन्यूमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इन्यूमरेशन वालों की सिर्फ ऐसी आईडी ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी,
1: इस तरीके
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। हाँ। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं, या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल बीएनबी सिस्टम भी है, तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
1: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
0: जी,
1: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
0: जी,
1: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
0: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
1: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर, बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
0: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, और वो परिवार की
1: जानकारी दे रहा है
0: जी। तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
1: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति रहे वो नहीं
0: जी।
1: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
0: जी,
1: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं,

0: इसके क्या स्ट्रक्चर की एट्रीब्यूट हैं वो
1: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है, तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती जो है, जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें?
2: जी देखिये, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बनाए कि नहीं बनाए, ये हमें नहीं देखना है।
1: जी
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
1: जी।
2: जिसका हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
1: जी।
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथोराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
1: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं अभी
1: जी
2: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
1: जी। अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है? इसका क्या प्रोसेस होगा?
0: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
1: जी।
0: तो अगर ऐप में मतलब जो एन्यूमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
0: उसमें सुधार नहीं होगा
1: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है, और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता?
0: देखिये, डुप्लीकेशन हो सकता है। जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग कुछ लोग इस तरीके का
1: जी। और
0: वैसे तो इनोमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इनोमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
0: है
1: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा, तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
0: नहीं, वो तो लॉक लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं
1: जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी अब
2: इसमें मैं थोड़ा सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी,
2: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी
2: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे
1: जी।
2: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
1: जी,
2: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे
1: जी।
2: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है, तो ये 30 दिन के अंदर अगर एन्यूमरेटर फर्स्ट या सेकंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो सुबह वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए
1: जी।
2: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे, मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया विंडो पीरियड। और इसी 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है लॉक या वैकेंट
1: जी। यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि सही जानकारी दर्ज हो और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक समय है।
0: उसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार
1: जी प्रयास किया जाएगा,
0: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है
1: जी, यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया

0: गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
1: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके चार डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल, जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी, जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया
0: जी।
1: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
0: जी,
1: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनोमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है
0: जी।
1: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनोमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनोमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनोमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं। वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
0: जी।
1: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
0: जी,
1: 10 से 15 मिनट।
0: और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
1: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं अब जोड़े गए 2011 के, उससे
0: जी
1: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
0: जी,
1: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
0: जी। जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है
1: जी।
0: अब जितेंद्र जी, ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो?
2: देखिए, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
0: जी,
2: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस दो फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकेंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में, उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
0: जी।
2: सिमिलरली विलेज का भी। तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, कि लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी LPG कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे
0: जी।
2: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट का पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक, जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे
0: जी,
2: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
0: जी।
1: तो जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में LPG है, क्या है, हमारे पास डेटा है, तो उसके हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी

0: चीजें जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है
1: जी,
0: तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है। तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है
1: जी,
0: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है, तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
1: जी
0: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए। जी, यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
0: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
0: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
0: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी,
0: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी,
0: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने
1: जी।
0: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से
1: जी। तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है जी। तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
0: साथी हाथ बढ़ाना
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना है, और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहां पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहां पे सेल्फ एनुमिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
0: एक बार दोहरा दीजिए।
1: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन .census.gov.in।
0: जी,
1: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
0: जी,
1: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
0: जी,
1: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
0: जी,
1: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है तो आने वाले सभी सवाल उसका इंग्लिश में ही मिलेगा।
0: जी,
1: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे, क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए 1 मई से लेके 15 मई, 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी। और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा, जब आपके घरों में एनुमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा, ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में।
0: जी,
1: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
0: HLO ऐप
1: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
0: जी, और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
1: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन से इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे।
0: जी, उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स। जी, और अजय जी अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
0: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एनुमरेशन कहते हैं उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें

0: मैं एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को।
1: जी
0: तो हमारे जितने इनोमरेटर हैं पूरे, जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और
1: जी,
0: फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी
0: इस तरीके से।
1: मतलब पे वो जहाँ भी
0: जहाँ पर भी वहीं पर
1: जी
0: फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
1: जी,
0: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं, वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है।
0: बिल्कुल
1: जी जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
2: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है
1: जी।
2: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा
1: जी,
2: ये क्वेश्चन की सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है। और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये
1: जी।
2: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी ये होती है, और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से, जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं
1: जी।
2: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, तो पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनिमेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं। तो इसमें कहीं मिस यूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजिशन का, यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है
1: जी। तो सवाल पहले से हमें
2: पता होता है
1: और उनके सही जवाब देते हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
2: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे
1: जी।
2: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग, चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है, जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं
1: जी,
2: मे बी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनिमेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है
1: जी,
2: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें
1: जी।
2: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा, तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है
1: जी।
2: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे, वो सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के
1: जी।
2: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है
1: जी,
2: और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है
1: जी। एक आम धारणा रहती है, जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते, और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है,
2: बिल्कुल
1: है ना?
2: अलग है।
1: आप जहाँ रह रही हैं, जहाँ आप काम कर रही हैं, आप वहाँ पर अपने आप को काउंट कर सकती हैं जी।
2: जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा
1: जी,
2: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सभी केसेस में
1: जी।
2: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एब्सेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मे भी

0: रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों का भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो उनको भी आप इसमें गिने
1: गिनेंगे उनको।
0: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
1: जी,
0: और मे भी कुछ दिनों का तो फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहाँ से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027
1: जी,
0: तो उस तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी
1: जी। आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस टेस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर, इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे एमसीडी एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी
1: जी,
0: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे एचएलओ होगी एमसीडी एरियाज में
1: जी।
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है
1: जी,
0: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका एचएलओ का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनुमरेशन है, और 22 मई से लेके 20 जून उनका एचएलओ का पीरियड है
1: जी।
0: हरियाणा का सेल्फ एनुमरेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका एचएलओ का पीरियड है
1: जी।
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनुमरेशन और एचएलओ का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं
1: जी,
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है
1: जी।
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
1: जी,
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है
1: जी,
0: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो
1: जी,
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है। तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से, मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
0: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो एमसीडी एरियाज जो है इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के, तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनिमरेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक, और उसके बाद ही एचएलओ होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून
1: जी।
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनिमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक एचएलओ होगी। उत्तर प्रदेश का जो एससी जो सेल्फ एनिमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक एचएलओ होगी
1: जी।
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनिमरेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक एचएलओ होगी। तो एचएलओ हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
2: एचएलओ का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे
1: जी। तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को जितेंद्र जी?
0: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
1: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
0: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है। और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है, सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूं, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: सुनते पोस्ट बॉक्स नंबर 111 रिले कृपया चार्कुल आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र रो।

वेलकम बैक टू कुचिन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो गडक देश रेल तकरी रेडियो हम सबर सागर छि आपन को सहित सो चलचे किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स एक कथा में समस्त जानती जे रुद्र तापरु बर्तिबा लागि अतीत रे लोक माने गछर छाइर आश्रय नैथिले एही कारणरु गां गोंडारु शहर पर्यंत बहुत सारा वृक्षरोपण जल हौ माटी हौ निहाति भाबरे सुरक्षित रखिबा सहित छाय प्रदान करथिला शीतलता प्रदान करथिला पूर्ण वर्णित अछि जे महावृक्ष उभय फल ओ छाय प्रदान करथाय जदि दैवत फल भी न देई पारे तबे से निश्चय छाय प्रदान करथाय। हाँ फ्रेंड्स वृक्ष छाय को सुरक्षा ओ आश्रय प्रतीक रूपे दर्शा जाइछि आगुक ए संपर्क रे ढेर सारा कथा हवा शुणिने हर्षित सक्सेना कंठे ब्यूटिफुल ट्रैक्टे स्टेडियम

वेलकम बैक ट्यून कुछ म्यूजिकली योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दिल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर जी आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स ग्रीष्म काल रे गछर छाई हमको प्राकृतिक शीतताप नियंत्रक भली काम करे उत्ताप शोषण करे शीतलता देथाय उद्भिद वैज्ञानिक मतरे गछर छाई एरो पारस्परिक उताप को आहुरी 5-6 degrees फारेनहाइट पर्यंत कमाई दे पारे किंतु ए सबु आमे खाली सुनुचे किंतु कोनोसी भी कामरे लगे पारे नै जदि आमे चिंता करबा गोटिए वृक्ष को रोपण करबा ताकु किपरि बड़ हबो तार जदि दायित्व नै परबा तेबे देखिबे से वृक्षटी जतले बड़ होई आपण मानको छाई प्रदान करबो फल प्रदान करबो केते संतुष्ट लागिव हां नियति भाबरे तो फ्रेंड्स छाई कारणरो माटी रे हमरो कबक आ सैबाळ भली अनेक उपकारी परजीवी मानंकर मध्य निश्चय भाबरे वंशवृद्धि घटिताय किंतु आमे भूली जाउचे कि हमरो चतुर्पार्श्वर जो पारस्परिक हमरो जो हमको रहिचि सेतरे आमे केमिति बंचिबा खाली आमे प्रकृति

वेलकम बैक टू उनको चिन्ह म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देश दिल तक रेडियो हम सब पर सागर अच्छे आपन को सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता आउ किछ कथा किछ गीत रे आज हमें कथा उचे ग्रीष्म गछ आउ तार छाई रो मूल्य से संपर्क रे फ्रेंड्स केबे के ई जो खरा दिन रे रास्तारे चालिया बेले हठात आपण गच्छ तळे आश्रय नेइचेंदि कि केबे विश्राम नेइचेंदि कि मन पकांतु थरे सेही मुहूर्तको आउ सेहिठी आपण माने अनुभव करथिबे हँ एइटा होउछि असल सकुन आमे जेते रिलीफ जेते आमे एसी रे बसन्ति आमको जेते रिलीफ लागे किन्तु प्राकृतिक परिवेश मध्यरे जेतेबेले गच्छर छाइरे आमे बसन्ति आमको निहाति भाबरे गोटे अलगा प्रकार फिलिंग आसे किन्तु आमे सबुठारु अधिक कम्प्लेन करु गरम बढ़िला किन्तु केबे सल्युशन भाविछन्ति कि ना केबे नुहे सल्युशन सिंपल मोर ट्रीज मोर लाइफ आमे गोटे इंटरेस्टिंग कथा गछ केवल आमको छाय दिए ना से पक्षी मानकर घर परिवेश बालांस आमर मध्य निहाति भाबरे फ्यूचर तेणु फ्रेंड्स आज घर को फेरिबा बेले गोटे गछ निहाति भाबरे नियंतु ताको रोपण करंतु आउ तार किपरि ताको बढ़ेबे बड़ करिबे से विषय रे निहाती चेष्टा करंतु कारण गच्छ लगाइबा माने आपण आपणकर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करचंती।

वेलकम बैक चुन कुछ चुन म्यूजिकल योर्स 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक देल से देल तक रे रेडियो हम सबर सागर जी आपन को सहित सो चलची किछ कथा किछ गीत फ्रेंड्स आमी माने शहर तयारी करू छे बड़ बड़ बिल्डिंग तयारी करू छे किंतु छाई धीरे धीरे कमी चली छे आमे एसी लगाऊ छे किंतु प्रकृति को भूली जाऊ छे सत कहले ग्रीष्म गरम आमर शत्रु नुहे से आमको मन पकाउ छे कि तुम्हें प्रकृति रु दूरी जाऊ छ हाँ आउ गोटे कथा आज जो गच तले आम बसुचे से गचटा कहीं ना कहीं निश्चय लगे तेणु फ्रेंड्स आपण मध्य कहारिपाई गोटे वृक्ष लाइफ टाइम मध्य निश्चय लगातु फल भविष्य में आम यार सुफल पाइबा सहित भविष्य पीढ़ी मध्य निश्चय उपकृत हे तो फ्रेंड्स यही शेष करीत प्रोग्राम स्टे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कडक दिल से दिल तक

0: ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି କଥା କିଛି ଗୀତରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ଗାଡ଼େକ୍ ଦେଲ୍ ସେ ଦେଲ୍ ତାକ୍। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରେଲଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ବିଶାଲ ଶର୍ମା। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।

0: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक ट्यून कुचिन म्यूजिक लियो 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक देश से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर जे आपन को सहित सो चलची आजी चर्चा रे आ आजी चर्चा रे आपन मन पे गुडे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मु रखितली कि आपन माने मार्क्स को इंपोर्टेंट रखंती कि स्किल को मो पाखरे आउ तीनोटी मेसेज असि पहुंच जाइछि देखिबा के मेसेज करचंदी आ कोड मेसेज करचंदी परवर्ती मेसेज टी करचंत्री राजेंद्र नना नुआ गांव से लिखिचंती गुड आफ्टरनून सागर भाई

0: over Northeast India, Kerala, Mahe, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu and Puducherry. Places over Jammu and Kashmir, Ladakh, Chhattisgarh and coastal Andhra Pradesh are expected to experience thunderstorms and lightning today. Similar weather conditions also likely to prevail today over parts of Haryana, Chandigarh, Delhi, Bihar, Odisha, Kerala, Punjab and Madhya Pradesh. The weather agency further predicted heat wave conditions today in places over coastal Andhra Pradesh. According to IMD, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to witness hot and humid weather conditions till tomorrow. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 3:30 today. Sunrisers Hyderabad are currently in third place, while Kolkata Knight Riders are positioned in eighth place. In another match, host Gujarat Titans will face Punjab Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. The match will start at 7:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Stage is set for counting of votes for four states' assemblies and one union territory tomorrow. All arrangement in place. Election Commission orders re-polling in all 285 polling stations of Falta Assembly constituency in West Bengal. Polling to take place on the 21st of this month. A massive fire claims 9 lives in Vivek Vihar area of Delhi. OPEC plus countries agree in principle to raise oil output targets next month amid ongoing West Asia conflict. World Press Freedom Day been observed today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to take on Kolkata Knight Riders today. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
3: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।

0: पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कार्यकाल यनम और माहे में होगी।
1: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
2: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
3: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। डीएमके और टीवीके ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
4: जनादेश 2026।
5: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
4: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
5: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
4: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
6: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को यह एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित एक दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक

0: दिल्ली के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद यह लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
1: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38,00,000 घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 3 दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमरीका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी

0: मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इतोलजे कार्यक्रम सुनतले आकाशवाणी दिल्ली रो ट्यून करचंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो गडक दिल से तेल तक। आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद सुनिपरिबे विज्ञापन विरोधी परे।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मानुफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायरों समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा एही जानगुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट्स सप्लायरक समस्या कम होइजिवो तथा सप्लाई चेन सहज हेबार संभावना रहिछि। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा ए जानगुड़ी को सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

ट्यून कुछ म्यूजिकल ही 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो घटे अपराह तीन बजे दुई मिनिट आरंभ करबा प्रोग्राम मो देश फ्रेंड्स मो देश केवल गोटे मानचित्र नुहे यह हूँ लक्ष लक्ष स्वप्नर घर तिरंगार गर्व सैनिक साहस कृषकों परिश्रम आउ प्रत्येक भारतीयों हृदयर धड़कन मो देश भिन्नतार एकतार सुंदर चित्र मानवतार मंदिर फल पाइबार परिचय एठार पर्व माने खुशी संस्कृति माने गर्व आउ देशभक्ति माने भावना आज मो देश कथा बा भाईचारा ओ मानवतार देश मो भारत कथा बा किंतु ए म्यूजिकल ब्रेक परे स्टे ट्यून्ड

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार

भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां,

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के टिके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं होता। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार

हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले

वेलकम बैक टू कोचिन म्यूजिकल यू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रेडियो वन सबर सागर अच्छी आपण को सहित सो चलची मो देश फ्रेंड्स आज दुनिया रे जोंठरे लोक माने छोट छोट कथरे विभक्ति होचंती सेठरे भारत हमको सिखाए मानवता सबठ उपरे काहाको सहायता करिबा काहाको हसी देबा काहाको सम्मान देबा ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସତ ଦେଶଭକ୍ତି ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରିବା ଧର୍ମ ଭାଷା ଜାତିଠାରୁ ଉପରେ ଉଠି ମାନବତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା କାରଣ ମୋ ଭାରତ ଭାଇଚାରା ଓ ମାନବତାର ଦେଶ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक, दिल से दिल तक। सो चली चीज सुरीला आफ्टरनून। सो फ्रेंड्स, बेले बेले आमे आमो इते बिजी शेड्यूल भितरे जिम जीबा को जमा भी फल पाउना, आ सकाळ केउटी नीत भांगे जे एक्सरसाइज करि परबा। सो फ्रेंड्स, आपण को पई गोटे इजी टू बी इजी वे अछि। तेबे सो फ्रेंड्स, दिनकु 10-15 मिनिट मन भरी हसंतु, एटा ही आपनक लाइफ रो पूरा फन डू एक्सरसाइज। जानिछंती फ्रेंड्स, ए हसिबा द्वारा आपन शरीर रो प्राय 40 कैलोरी पर्यंत एनर्जी लॉस कर पारिबे, जोटा की आपनकु हेल्दी रहिबारे हेल्प करिवो। सो फ्रेंड्स, एटा सुनिबा को बहुत ही स्ट्रेंज लागुथिले बि पूरा ट्रू। हसिबा द्वारा आम पेटर मांसपेशी गुड़िकर बहुत सुंदर कसरत होता है। सो आम जिम न गले भी हसी हसी आम शरीर थकापन को मेंटे पारिबा, एनर्जी क्रिएट करे पारिबा एवं आमर मेद बहुलता भी दूर करे पारिबा। सो जमा भी कौन कहिबी, जमा भी कुंठा करंतनी हसिबा पई, जमा भी हसकु चापंतु नै, दिल से हसंतु आ सुनो थांतु दिल से दिल तक 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।

दूर होता सो फ्रेंड्स जितेबेले आमे हसु आम बॉडी रे कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन रही कमी जाए था आउ एहा बदल रे आम ब्रेन रु डोपामाइन भली खुशी देउथिबा हार्मोन झरी थाए सो फ्रेंड्स हस एमिति को नेचुरल वे जहां आम को चिंता मुक्त रखी थाए कौनसी केमिकल मेडिसिन बिना आमे आम निज मन को शांत रखी पारिबा जदि आमे दिन को किछि समय मन खुला हसी पारिबा सो चिंता को कहंतु बाय बाय आउ हस को कर दियंतु निजर बेस्ट फ्रेंड आउ आपणक स्माइल को बरकरार रखिबा पई आपणक नै जीवा को गोटे बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजिकल जर्नी रे आपण सुनि छंती आमको माने आपण जोडी हे छंदी आपणक फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन सहित जहां होची 100.4 आकाश वाणी एफएम रेनबो कटक सो इमती ही हसु थांतु आमको सुनु थांतु आउ झूम थांतु।

वशंती सर्वस्मिक चारी आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिलदार सो चली छी सुरेला आफ्टरनून आपण जोड़ी छंती मो सहित मैंने आपण म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुभी सहित फ्रेंड्स सो हस केवल आम मन को शांत करथाय सेटा नहे हसिबा द्वारा आम बॉडी रे इम्यूनिटी पावर भी बढ़ी थाए सो भित्री कसरत करिबा द्वारा आम शरीर सब कोष गुड़िक बेसी एनर्जेटिक हो उठती सो हसिबा द्वारा आम शरीर एंटीबॉडीज बढ़ी थाए एवं हसिबा द्वारा आम कोष गुड़िक बॉडी भितरे अधिक एंटीबॉडी प्रस्तुत करिपारिथांती सो फ्रेंड्स टेक्निकली आपण जेते हसिबे रोगठु सेते दूररे रही पारिबे सुस्थ जीवन पाई हसिबा गोटे सरल आयुर्वेदिक मंत्रा भले सो फ्रेंड्स जमा भी निग्लेक्ट करंतुनी निजो को टाइम दियंतु हसंतु निजो परिवार सह मिसी की हसंतु एवं एंजॉय करुथांतु आमको माने ए म्यूजिकल ट्रैक गुड़ी को स्टे ट्यून्ड दिल से दिलदार

वेलकम बैक फ्रेंड्स, तो चली छी सुरिला आफ्टरनून। आओ सुरिला आफ्टरनून पहुंच जाई छी तारो एंड सेगमेंट रे, कहेंगे ना समय भी इशारा दिलानी ई शो को एंड करबा को, सो दैट आमे आगे को बढ़ी परबा आउरी ढेर सारा आपनक सहित मीठा मीठा गपशप कर परबा। सो ई शो एंड रे इति की कहबी हसबा पाए हमको कोनसी भी टैक्स लागि न थाय। सो आमको नेचर एटा गोटे इमतिका गिफ्ट जहाँ आम सहित सबुबले थाए। सो निजे हसंतु एवं अन्य मानंको हसेबारे सबुबले साहाज्य करंतु। लाइफ रो सबु समस्या को हसी हसी सामना करिबा सिखंतु। लाइफ रे केते बेले भी आपनंकु किछि संघर्ष करबाक पडुछि, किछि डिलेमा आपनंक लाइफ रे अछि, कोनसी द्वंद्व अछि, त प्रथमे आगो हसी दियंतु, ई प्रॉब्लम को निजे एक्सेप्ट करंतु, एहाकु चैलेंज भाबरे ग्रहण करंतु एवं किमिति एहार समाधान करा जाय परिबो, हसी हसी चिंता करंतु, निजर नियरर एंड डियरर मानंकर सॉल्यूशन नियंतु, सजेशन नियंतु एवं निजो को सबुबले सुस्थ रखिबा को ट्राई करंतु। आपनका लाइफ रे एमती आमे सब

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. आज हम रिश्तों के बारे में बात करने जा रहे हैं. ऐसे रिश्ते जो माता पिता और अपने यंग चिल्ड्रन के बारे में है. रिलेशनशिप बिटवीन टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स. पेरेंटिंग एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. उसमें भी अगर बच्चा टीनेज यानी 13 साल लेके 19 साल के बीच है तो ये और चैलेंजिंग हो जाता है. वजह यह है कि इस दौरान उनमें शारीरिक और मानसिक तौर पर कई बदलाव होते हैं. दूसरी ओर इसी उम्र में बच्चे की शिक्षा ऐसी पड़ाव पर होती है जिससे उसका पूरा करियर तय होता है. टीनेज में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से बच्चे के सोच और व्यवहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और अनुशासीन हो सकता है. इस उम्र में बच्चे अपनी प्राइवेसी को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं. यही कारण है कि वे बड़ों से अपनी कुछ बात छुपाने की कोशिश भी करते हैं और उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर सही समय पर उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है तो बच्चों को भविष्य में कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसीलिए टीनेज के दौरान बच्चों की परवरिश में पेरेंट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. आज रिलेशनशिप प्रोग्राम में, खासकर आज लम्हे के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पेरेंट टीनेजर रिलेशनशिप के बारे में. इस प्रोग्राम में टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग की साथ ही जानेंगे कि टीनेजर बच्चे की पेरेंटिंग में माता पिता की क्या भूमिका है, क्या किरदार है. इस उम्र के बच्चों के साथ पेरेंट्स को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. टीनेज में बच्चे अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर और दोस्तों से ज्यादा करीब होने लगते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उन्हें उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना कि उनके दोस्त समझ सकते हैं. एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक टीनेज बच्चों की परवरिश परिवार के लिए सबसे कठिन चुनौती में से एक है. हार्मोन में बदलाव और शारीरिक परिवर्तन जैसे चीजें से जुड़े रहे टीनेजर्स को लगता है कि कोई भी उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकता है, खासकर पेरेंट्स तो बिल्कुल ही नहीं. इससे वे अकेले और भ्रमित महसूस कर सकते हैं. वही पेरेंट्स इस बात से परेशान हो सकते हैं कि उनका बच्चा अब पहले की तरह अनुशासित नहीं है. कई बार ये चीजें बच्चे और पेरेंट्स के बीच मनमुटाव के वजह भी बन जाती है. इसलिए टीनेजर्स की पेरेंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है. तो दोस्तों, आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि बच्चों में कैसे बदलाव आते हैं टीनेज में. टीनेज के दौरान बच्चों में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि ये बदलाव शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरह के हो सकते हैं. टीनेज बेहद नाजुक उम्र होती है. इसमें बच्चे नए दोस्त बनाना, नई नई चीजों को जानना, समझना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं. इसके अलावा उनमें कुछ और बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, पढ़ाई में मन कम लगता है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होता है, स्वभाव में

चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा जल्दी आता है, दोस्तों की कंपनी ज्यादा पसंद आती है, गैजेट से अधिक लगाव होता है, खान पान से जुड़ी आदतों में बदलाव होता है। इस उम्र में बच्चे किसी भी नई चीज को जानने समझने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। वे बिना किसी की सलाह के खुद से निर्णय लेने चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। इसीलिए टीनेज में बच्चों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इसमें माता पिता ये समझना जरूरी है कि बच्चों में कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स को उनके साथ बैठकर हर मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए, उन्हें पूरा सपोर्ट देना चाहिए, जिससे वे कोई भी निर्णय बिना पेरेंट्स की सलाह के न ले। टीनेज में बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए होती है, ऐसे में माता पिता को बच्चों पर नजर रखनी चाहिए कि वो कब कहां आते जाते हैं, मोबाइल फोन में क्या देखते हैं, नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम अपने बच्चों का भविष्य तैयार करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। उनकी बातों को ध्यान से सुने और उसे समझने की कोशिश करें। दट्टू विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस। जब बच्चे बात करते हैं तो पूरा फोकस्ड रहकर, अनडिवाइडेड अटेंशन देकर उनकी पूरी बात सुने, बीच में न टोके, उन्हें पर्सनल स्पेस दे, लेकिन दिनचर्या पर नजर बनाए रखें। गैजेट्स के इस्तेमाल को लेकर लिमिट तय करें। ये भी जानकारी रखें कि वे अपने फोन में क्या देखते हैं। उन्हें अपने मन की बात शेयर करने के लिए प्रेरित करें। उनके सपने और लक्ष्यों का सपोर्ट करें। उन्हें हेल्थी डाइट और पर्याप्त नींद लेने के लिए प्रेरित करें। उन्हें स्वतंत्रता दें, लेकिन जिम्मेदारी भी सिखाएं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए मारने पीटने का तरीका अपनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका बच्चों पर विपरीत असर पड़ता है। वे माँ बाप से डरने लगते हैं और उनके साथ अपनी कोई भी बात शेयर करने से घबराते हैं। इसके अलावा माता पिता टीन एजर बच्चों की पेरेंटिंग में कुछ और गलतियां करते हैं जिनसे बचना चाहिए। इसे कैसे समझे हम टीन एजर्स के पेरेंट्स में न करे कैसे गलतियां, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसा न पेश आए कि बच्चे बात करने से डरे, उस पर किसी भी तरह का दबाव न बनाए, उसकी भावनाओं को नजरअंदाज न करें, किसी दूसरे बच्चे से उसकी तुलना न करें, उसे हर चीज के लिए मना न करें, किसी बात पर चिल्लाए या गुस्सा न करें। बच्चों को मारने पीटने की गलती कभी भी न करें दोस्तों। अगर बच्चे जवाब देते हैं तो डांटे नहीं, समझिए उन्हें। कभी आप भी ऐसे थे, आप भी उस किशोरावस्था से गुजर के ही अडल्ट बने और उसके बाद एक पेरेंट। अपने बचपन और अपने यंग डेज को याद कीजिए। टीनेजर बच्चों के पेरेंटिंग के लिए कुछ सुझाव है जो लम्हे प्रोग्राम में चेतन आपसे शेयर करेंगे। अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, म्यूजिक, थिएटर और आर्ट जिसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। एनकरेज देम टू लर्न फाइन आर्ट्स टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद प्रोडक्टिव वर्क। उनके अच्छे प्रयासों और उपलब्धियों की तारीफ जरूर करें। उन्हें लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सिखाएं। उन्हें उनकी पसंदीदा एक्टिविटी करने दें, उन पर लगाम न लगाएं। उन्हें एक्सरसाइज करने और हेल्थी डाइट लेने के फायदे को एक्सप्लेन करें। बच्चे से सड़क पर सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में बात करें। उनसे ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग के खतरों के बारे में एक्सप्लेन करें। काउंसलिंग दें। किशोरावस्था बच्चे और माता पिता दोनों के लिए एक कठिन अवस्था है। इस अवस्था में दोनों को एक दूसरे के विचारों को समझने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में रिश्ते में तनाव आने की संभावना होती है। जब माता पिता पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं रहती तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। टीनेजर्स बच्चे मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में टीनेजर्स बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार ही सही राहत दिलाती है, वरना मामला बिगड़ जाता है। टीनेजर्स बच्चों को दोस्त बनाने के लिए पेरेंट्स को कुछ खास बॉन्ड डेवलप करना होता है। ऐसा करने से रिश्ते एक अलग मुकाम हासिल करता है। उनकी रुचि में रुचि दिखाएं। यह जरूरी नहीं है कि आपको उनके शौक के बारे में पूरी जानकारी हो, बस दिलचस्पी दिखाएं।

वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर दिस न्यूज ब्रेक ट्यून करी छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सो फ्रेंड्स स्टूडियो घड़ी टाइम वर्तमान अपराह्न 5:02 बजे 2 मिनिट। सो आरंभ करिवा आपण कर एवं मोर दिल से दिल तक कनेक्ट हवार। सो डायल इन लाइव चिटचैट। सो ई डायल इन लाइव चिटचैट रे मु अच्छी आपणकर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी। समस्तको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आम लाइफ रा सब बले गोटे ही मकसद थाए जोटा हेला सब कामरे सक्सेसफुल हबा माने सफलता पाइबा। सो फ्रेंड्स जेते बले कोनसी कामरे सफलता अछि ता सहित विफलता भी थाए किंतु जेमती कथारे अछि ई विफलता ही सफलतार चाबिकाठी। सो फ्रेंड्स एमिति किछि विफलता थाए जहां हमको देखे दिए आगो को बढ़िबार रास्ता आउ सफलतार पथ। सो फ्रेंड्स जेमते कहाय छि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। ई फेलियर ही हमको बाट कढ़ी दिए केमिति आमे से कामटी को संभव करि परिबा जेउथिरे आमे बारंबार फेलियर होछे।

0: सो फ्रेंड्स आम सहित ऑलरेडी जोड़ी ही गले आमर फर्स्ट कॉलर सो देखिनबा किए अछंदी आम सहित कोठो अछंदी
1: हां
0: हेलो हाय गुड आफ्टरनून के कोछंदी और कोठो कोछंदी
1: अशोक पंडा मधुपटना कटक
0: अशोक भाई आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत केमती अछंदी
1: भलो अछि
0: तले कोन कहबे एमती किछि फेलियर जोटा आपण को लाइफ रे सक्सेस हवा सिखै छी से विषय रे कोन कहबे
1: एडा तो निश्चित कथा जीवन रे सफलता विफलता लागि रहि थाए
0: आज्ञा
1: आओ प्रत्येक मनुष्य जीवन रे एटा आसी थाए तेणु मो जीवन रे भी सेमती विफलता आसी मो चाहूली जहाँ हवा पाई कि से लक्ष्य हासिल कर विफल हेली
0: आज्ञा
1: किंतु गोटे बाट बंद हो गले आउ गोटे बाट खोली जाए थाए से कि मो अन्य काम रे योगदान कलि एथर विफल होगी अन्य काम रे योगदान कलि से सफल हो पारि अन्य काम रे सफल होगी मो जीवन टा सुरखुरी रे कटिला
0: जाहो बहुत बढ़िया कथा शेयर कले आम सहित तो जिम्ती कहले गोटे रास्ता बंद हो गले आउ गोटे रास्ता आम पाई खोली जाई थाए आपनकर एते सुंदर मतामत पाई आपनको बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: सो ये थिले अशोक भाई आम सहित शेयर कले केमिति से जहा हबा को चाहुथिले ताहा न हेले मध्य जीवन रो अन्य रास्ता रे जाई सफलता पाइथिले सो एमिति किछे विफलता जदि आपनको जीवन ने अछि शेयर कर दियंतु मो सहित नंबर टी होछि 0671230315 स्टे ट्यून्ड टू योर फेवरेट म्यूजिकल एफएम स्टेशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

0: सो फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सो चली डायल इन लाइव चिट चैट आओ मो सहित जोड़ी जाइछंती हमारा नेक्स्ट कॉलर सो चलन सुन नबा तंकु हेलो गुड आफ्टरनून के अछंती हम सहित कोठ अछंती हेलो हेलो
1: हेलो
0: के अछंती हम सहित कोठ अछंती हेलो सुनी पड़ती मुझे आपड़ आम को जो थी भी शुणी तार वॉल्यूम लो कर दिंतु और गोटे फांका जगह को आसी कथा को चेष्टा करूँ सो कॉल टी कटि जाइछि कारण तो पुणी थरे आपण समस्त रिक्वेस्ट करी कारण आउ बहुत ही कम समय अच्छे आम पाखे जो मैंने भी आम सहित जोड़ी होती आमको जदि कौन मध्यम स्मार्टफोन मध्यम रेडियो मध्यम शुणुंट आम सहित कथा बेले यार वॉल्यूम टी लो कर दिंतु और आम सहित हूँ मीठा मीठा गपशप

0: मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।
1: सुनिबाकु भूलिबेनि भारत मसला प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे आजि ठीक संध्या 7:00।
2: जीएसटी काउंसिल टैक्स को आहुरी सरल कर देछि। सरकार सीमेंट उपरे जीएसटी दर 28% रु ह्रास करि 18% करि देछन्ति। टैक्स ह्रास द्वारा घरोई एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट उपरे चाप कम हेबार संभावना रहिछि। एहिपरि मार्बल एवं ट्राबोटिन ब्लॉक उपरे टैक्स रो दर 12% रु ह्रास करि 5% करि दिया जाइछि।

आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो खड़ी रे समय वर्तमान संध्या 6:05:30। वर्तमान सुनिबा आज प्रचारित हेबाक थिबा कार्यक्रम सूचना। गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर षष्ठ अध्याय शुणिबे संध्या 6:10। भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना शुणिपारे संध्या 6:30। संध्या 7:00 शुणिबे प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे। संध्या असर शुणिबे संध्या 7:25। राति 8:02 शुणिबे कार्यक्रम गीतरे मितरे। अभुला स्मृति शुणिपारे राति 9:15 एवं राति 10:00 निजर मनपसंद गीत रिक्वेस्ट करि एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया रे शुणिपारे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस रे। आज प्रचारित होगा कार्यक्रम सूचना। वर्तमान शुणु आसंका अर्थात मे मस 4 सोमवार दिन प्रचारित होगा कार्यक्रम सूचना। भक्ति गीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणिबे सका 6:05। अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 25 भाग शुणिबे सका 6:40। आमर स्वास्थ्य सका 7:10। शुभ सकाळ सुणिबे सकाळ 7:25। मॉर्निंग मेलोडी सुणिबे सकाळ 8:30। सकाळ 9:00 डायल इन लाइव चिट चैट एथिरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल माध्यमरे निजर मत रखिपारिबे। रेनबो एसएमएस रे निजर मनपसंद गीत रिक्वेस्ट करि सुणिपारिबे सकाळ 10:00। दिन 11:00 रहिछि कार्यक्रम कलाकार किछि कथा किछि गीत शुणिपारे। अपराह 12:00 दिन 12:10 शुणिबे दिन 1:10 शुणिबे आज चर्चा रे एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मत व्हाट्सएप किंबा एसएमएस माध्यम रे शेयर करि पारिबे। पुरणा उड़िया कथाचित्र गीत शुणिबे दिन 2:45। अपराह 3:00 कार्यक्रम मो देश सुरिला आफ्टरनून शुणिबे अपराह 4:00। डायल इन लाइव चिट चाट अपराह 5:02।

श्री रामचरितमानस जैसे विशाल ग्रंथ की रचना करने में गोस्वामी तुलसीदास जैसा विनयी भक्त अपने को सर्वथा अक्षम तथा असमर्थ पाता है। उनका कहना है, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी। मन में भरोसा इस बात का है कि उनकी कविता में श्री राम का प्रताप है, और भला संग मिलने पर बड़प्पन किसने नहीं पाया।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल करि देला। ए पर्यंत होटल रूम उपरे जीएसटी रो चारोटी दर लागुची। 1000 टंका रु कम दर युक्त होटल रूम उपरे 0% जीएसटी अछि। जेतेबेले कि 1000 टंका रु 2469 टंका मध्यरे तिबा होटल रूम उपरे काउंसिल 12% जीएसटी लागुकुतिबा 18% रु 7400।

0: GST Council Commercial Business रे tax को आहुरी सरल कर दिया जाई छी। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाई छी, जहां पूर्वरु 28% थिला। HS कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई पारिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
2: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
3: ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टूडियो घड़ी वर्तमान समय बाजिबा को जाउछि राती 7:00। प्रचार करुछु प्रायोजित कार्यक्रम कथारे कथारे गीतरे गीतरे।
4: यही कार्यक्रम।

0: भारत की सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्लांट भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया।
1: तेरे श्रोता बंधु गत अध्याय भाग्यशाली विजेता आपण माने ममता दास रघुनाथपुर जगतसिंहपुर रु, शाश्वत महापात्र जयपुर रु एवं मोनालिसा प्रधान कुटासिंघा बलांगीर रु कार्यक्रम तरफ आमर भाग्यशाली विजेता मानंकु अभिनंदन। तबे मन रखंतु आज अध्याय प्रश्नटि हेला प्रकृत जीवन कहिले आपण कौन बुझंते, जदिबा यहार उत्तर आज अध्याय अतिथि माने कहि सारिचंते। तथापि आपणक भावनारे जीवन कहिले आपण कौन बुझंते, आज राति 10:30 सुद्धा आमर व्हाट्सएप नंबर 8847862377 नंबर रे लेखि पठेबाकु अनुरोध। जो तीन जन श्रोता बंधुक कथा ए मनकु छुइब से माने ही आमर आज अध्याय भाग्यशाली विजेता भावरे मनोनीत हेबा सहित आगामी मंचरे सेमानंक पई रहिबो भारत मसाला पक्षरु स्वतंत्र पुरस्कार। तबे आज पई आरजे नलिनी को विदाय दियंतु, नमस्कार।
2: एही कार्यक्रमर प्रायोजक थिले भारत मसाला।
3: आमर परवर्ती कार्यक्रम ओडियारे संवाद।

FM स्टेशन 100.4 आकाशवाणी FM रेनबो कटक दिल से दिल तक स्टूडियो खड़ी रे समय वर्तमान राति 7:25 तो रेनबो खड़ी रे समय हे जाई छे आरंभ करबा शो संध्या असर रे मोची आपनंकर म्यूजिकल होस्ट एंड दोस्त सुवी सो फ्रेंड्स ये आसर जमीबा आपनंकर सहित किछि मीठा मीठा गीत रे आउ आपनंकर मीठा मीठा एसएमएस रे सो जदी रही छी आज आपनंकर को नियरर एंड डियरर वन कर बर्थडे या फिर किछि स्पेशल विश जानिबा को चाहू छंती गुड लक जानिबा को चाहू छंती या फिर रही छी को स्वीट कपल कर एनिवर्सरी जानिबा को चाहू छंती पेज जक जणै दियंतु एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरियारे एसएमएस करबा पई फोन उठान्तु एसएमएस बॉक्स को जानतु टाइप करि दियंतु एफएमआरसी स्पेस दे लिखि दियंतु आपनकर मेसेज आउ पठि दियंतु आपनकर नाउ ठिकणा लिखि 0949593210 नंबर रे 0949593210 हिची हमर एसएमएस नंबर आमको व्हाट्सअप कर नंबर टी हूँ 8895254200 8895254200

वेलकम बैक फ्रेंड्स ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुबह अच्छे अपन सहित विद शो संध्या असर चढ़ी गली श्रोता तो लिखी सदाशिव को प्रणाम करुची दीदी आपणकर गुड उपस्थापना पाई मु आंतरिक धन्यवाद जनाउची शिवंकर शुभ दृष्टि आपणक प्रकाशित हेउ सो ए मेसेज टी करिछंती हमर नियमित श्रोता राजेंद्र नाना आपणको बहुत बहुत धन्यवाद एमती आम सहित सबुबेले जोड़ी ही थांतो आमको सुणु थांतो आज हेउची विश्व हस दिवस हसंतु सबुबेले आउ सुस्थ रुहंतु खुशी रे रुहंतु आ आमको सबुबेले एमती सुणु थांतो आपणको पाखरे पहुंची दो छी आउ किछि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक सो क्वाड़े भी जीवनी क्वाड़े भी स्विच करिवेनी ओनली एंड ओनली 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक आउ कहुतबे दिल से दिल तक।

0: আমার পরবর্তী কার্যক্রম সমাচার সন্ধ্যা এবং নিউজ আট নাইন রিলে করে প্রচার করছি আকাশবাণী দিল্লি।
1: मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने

0: कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तीनसुकिया और जोरहाट में दो दो केंद्र तथा नौगांव में तीन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6000 काउंटिंग

0: काउंटिंग कर्मी और 2300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
3: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: IIT मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो।

0: ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वह हॉर्मुज जल्द भूमध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आरपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North

मोर आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सुबह जे आपन क सहित सो चली छी अभिला स्मृति आवा में कथा यो छी सिचल बोली नायिका नरगिस दत्तांक विषय रे। नरगिस दत्तांक कथा आसीले तांक विपक्ष रे मने पड़ंती राज कपूर। राज कपूर आउ नरगिस को जोड़ी पर्दा उपरे गोटे जादू तैयारी करूथिला आउ सेही जोड़ी रो मूवीज गुड़ी को देखिबा पई सिनेमा हॉल बाहरे लोकंकर बहुत भीड़ जमुथिला। आरके फिल्म्स रो सेही लोगो जेउथरे राज कपूर गोटे हाथ रे धरिछंती बेहला आउ गोटे हाथ रे नरगिस को सेही चित्र आज भी सिनेमा जगत रो गोटे आइकॉनिक चित्र ही रहिछे। राज कपूर एवं नरगिस एकाठी प्राय 16 मूवीज करिथिले एवं सबु सिनेमा सेतेबेलर युवपीढ़ी को पाई प्रेमर गोटे नुआ परिभाषा साजिथिला। सेमाने को केमिस्ट्री एते निखुण थिला जे आजर दिनर भी नुआ कलाकार माने सेमाने को अभिनय को निजर इंस्पिरेशन भावरे नहीं थांती।

से मदर इंडिया मूवीज र सुटिंग समय रे सेठे थरे भयंकर निया लग जाइतला आउ नरगिस चारियाडू ए निया घेररी फसी जाइतिबा बेले सुनील दत्ता निज जीवन को बाजी लगी तांको उद्धार करथिले। ए घटना सेमनक जीवन गतिपथ बदली दिथिला आउ दुहिंक भितरे गोटे अतुट प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिला। क्यारियर रे निजर शीर्ष समय रे थिबा सत्वे नरगिस क्यारियर अपेक्षा भल पाइबा को बाछिथिले एवं 1958 रे सुनील दत्तांकु सीक्रेटली विवाह करिथिले। सेमनकर ए प्रेम कहानी बॉलीवुड रो सबुठ श्रेष्ठ आउ रिस्पेक्टेड कहानी भावे आज भी विवेचित हेथाय। अदाकारांको विषयरे आहुरी किछि कथा भागको किन्तु इमती आम सहित जोडी ही रहितांतु ओनली एंड ओनली ऑन 100.4 आगस्ट बाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टे ट्यून्ड।

ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। सो चली छी आपन अंकर फेवरेट रेनबो एसएमएस रो। तो नेक्स्ट एसएमएस टी करी छंती सान कटक रू एवं गीता डेडिकेट करी छंती तांकर लव को एवं सुनिबा को चाहि छंती जन्नत मूवी रू गोटे बहुत ही खास ट्रैक एवं परे परे रिक्वेस्ट करी छंती सिकुन लिकुन चौधर कटक रू एवं सुनिबा को चाहि छंती मूवी हम साथ साथ हे रो टाइटल ट्रैक एवं डेडिकेट करी छंती तांकर होल फैमिली को। सो दुईटी ब्यूटीफुल ट्रैक पहुंचे दो छी आपनका पाखरे ऑन द शो रेनबो एसएमएस आपण माने सुन छंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। स्टे ट्यून्ड।

हम साथ साथ हे आपण का साथ थिले सब किछि एमति हि चली थिबो एवं आपण माने एमति आम सहित जोड़ी हेतबे आ मु सुनि दोथिबे आपण को मन पसंद गीत आई मन पसंद गीत रो चली रेनबो एसएमएस सो परे परे रिक्वेस्ट करिछंती आमको प्रभात बलियार सिंह चंदन एवं टुनी बांकी कॉलेज बांकी रु सुनिबा को चाहिछंती अनुराग कथाचित्र रु गोटे गीत एवं परे परे आम सहित जोड़ी हेछंती दिलीप सुतार धूसुरी भद्रक रु लिखिछंती गुड इवनिंग भौणी केमिति अछंती सुनिबा को चाहिछंती राम तेरी गंगा मेली कथचित्र गीत तो बहुत भल अच्छी होप आपण भी भल थे सो आउ जो भाई आमको रिक्वेस्ट करिक्वेस्ट पठाई जितेन्द्र नियाली माधव रु शुणा को चाहिए आलबम ओडिया आलबम हे प्रिय तमार गोटे गीत सो तीनो गीत बैक टू बैक आपण पहुंचे एंजय कर म्यूजिकल ट्राक गुड़ी झुम था किप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून 200.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक कहता दिल से दिल दाक।

ट्यून करशन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक सोचले छि रेनबो एसएमएस रो सो आम पखरे डेल से रिक्वेस्ट अछि देखिना बाकी करछन थी परवर्ती रिक्वेस्ट एटी को रिक्वेस्ट करछन थी सोम पूजा शत्रुघ्न एवं त्रिसना रंगमाटिया मंचेश्वर भुवनेश्वर रु लिखिछन्ते मैम नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आपणक मध्य नमस्कार एवं जय श्री जगन्नाथ सुनबाको चाहिछन्ति तू चालू तो बाटरे गोटे बहुत ही ब्यूटीफुल ओडिया गीत एवं परे परे रिक्वेस्ट करिछंती मेरा चांद मुझे आया है नजर ए गीतटी सुनबा को चाहिछंती रश्मि रंजन दास कटक रु एवं हमको एसएमएस जोगे रिक्वेस्ट करिछंती गीतटी ए संतोष कुमार साहू डाला तोला खोर्धा रु एवं सुनबा को चाहिछंती डॉन कथाचित्र रु आरे दीवानो मुझे पहचानो गीतटी सो समस्त रिक्वेस्ट रखा चेष्टा करी निहांती किंतु समय पाबंदी भितरे न रखी पारे किंतु ए तीनोटी ट्रैक पहुंचे दुछि आपनका पाखरे सो स्टे ट्यून टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक

0: होगी। उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अपन माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्र रु।
4: राति 11:05 रो मुख्य संवाद सह मु महेन्द्र कुमार माझी। पश्चिमबंग, केरलम, तमिलनाडु, आसाम राज्य समेत केन्द्रशासित अंचल पुडुचेरी विधानसभा निमन्ते आसन्ताकाली हेबो भोट गणति, समस्त प्रस्तुति चूड़ान्त। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसंताकाली उत्तर प्रदेशर प्रयागराजठारे प्रजुक्ति विद्या, शिल्प ओ सेना समन्वयर वार्ता नै रक्षा त्रिवेणी संगमर उद्घाटन करिवे। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर् आसंताकालीठार् पालन करा जिवो सर्वभारतीय अग्नि निरापत्ता सप्ताह। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ

रेशन दे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक आज अधिवेशन शेष करने पूर्व आसंताकाली अर्थात मे मास 4 तारीख सोमवार दिन प्रचारित होबाक थिबा कार्यक्रम सूचना भक्तिगीतर कार्यक्रम अर्घ्यथाळी शुणिबे सकाळ 6:05 रे अतिबड़ी श्री जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद भागवतर 25तम अध्याय शुणिबे सकाळ 6:40 रे आमर स्वास्थ्य सकाळ 7:10 रे शुभ सकाळ शुणिबे सकाळ 7:25 रे मॉर्निंग मेलोडी शुणिबे सकाळ 8:30 रे सकाळ 9:00 रे शुणिबे कार्यक्रम डायल इन लाइफ चिटचाट एथिरे निर्धारित विषय रे फोन कॉल माध्यम रे निजर मत रखि पारिबे रेनबो एसएमएस कार्यक्रम रे निज मनपसंद गीत रिक्वेस्ट करि शुणि पारिबे सकाळ 10:00 रे दिन 11:00 रे शुणिबे कार्यक्रम कलाकार किछि कथा किछि गीत शुणिबे अपराह्न 12:00 रे दिन 10:00 रे शुणिबे आज चर्चा रे एथिरे निर्धारित विषय रे निजर मत व्हाट्सएप किंबा एसएमएस माध्यम रे शेयर करि पारिबे पुरणा ओडिया कथाचित्र गीत शुणिबे दिन 2:45 रे अपराह्न 3:00 रे शुणिबे मो देश सुरिला ओ आफ्टरनून शुणिबे अपराह्न 4:00 रे डायल इन लाइव चिटचाट शुणिबे संध्या 5:02 रे गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरित मानसर सप्तम अध्याय शुणिबे संध्या 6:10 रे भक्ति गीतर कार्यक्रम आराधना संध्या 6:30 रे संध्या 7:25 रे शुणिबे कार्यक्रम संध्या आसर राति 8:02 रे गीतरे मितरे अभुला स्मृति शुणि पारिबे राति 9:15 रे एवं राति 10:00 रे निज मनपसंद गीत एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिया रे रिक्वेस्ट करी सुनी पारिबे कार्यक्रम रेनबो एसएमएस रे सुनिले आसंता काली प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रम सूचना

0: ସାବଧାନ, ଅଂଶୁଘାତ ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ।
1: ତେବେ ଦିନ 11 ରୁ 3ଟା ଖରାକୁ ନ ଯାଇ ଛାଇରେ ରହନ୍ତୁ।
0: ଓଦା ଗାମୁଛା, ଛତା, ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନବା ସହିତ କଳା ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
1: ପାଣି, ସର୍ବତ, ଘୋଳ ଦହି, ତୋରାଣି ଆଉ ORS ପଣା ନିହାତି ପିଅନ୍ତୁ।
0: କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ସହ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ବଢି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
1: କିନ୍ତୁ ହଁ, ଖରା ଦିନରେ ଖାଲି ପେଟରେ ରୁହନ୍ତୁନି କି ନିଶା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁନି।
0: ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଉ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଖରାକୁ ବାହାରନ୍ତୁନି।
2: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା।
3: श्रोता बंधु ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल सी दिल तक मुकोयला आपण मानक साथी अछि आज रे लवली ब्यूटीफुल मॉर्निंग को आमे समस्त मिसी एन्जॉय करू छे। टिके पूर्वरु आपण को कहूथिली आज हेउछि वर्ल्ड बैकअप डे, तेनु निजर जरूरी डिजिटल डाटा एवं फोटो गुडी को बैकअप करबा को बिल्कुल भूलंतनी। आज रो दिनटी आपण को पई खूब भल रेकॉर्ड रु एतिकी कामना तो मु करू छी, किंतु ता सहित आमे आज इतिहास पृष्ठ को जदि लेउटौचे तेबे आज दिन रे माने 1889 आज दिन रे पेरिस रो सान आन बोलौथबा कुहा जाउथबा विश्व प्रसिद्ध आइफेल टावर रो उद्घाटन करा जायथिला, जहां आज विश्व रो सबठारु रोमांचकर पर्यटन स्थली भाबरे परिचित। तो आइफेल टावर रा आज होजी हैप्पी बर्थडे सेंति कहिबा को गले, तेबे आज दिन रे ही उद्घाटन करा जाय थिला। ता सहित जने विशिष्ट व्यक्ति आज हेउछि जन्मदिन, से हेउछन्ती आम भारत प्रथम महिला डाक्टर आनंदी गोपाल जोशी। जेतेबेले समय रे जने महिला डाक्टर डाक्टरी पाठ पढ़ीबा आ विदेश जीवा बहुत कष्टकर थिला, आम समस्त से प्रेरणादायी साजी से एक काम को करथिले। तांको सह प्रसिद्ध फरासी दार्शनिक रेने डेकार्ते एवं महान संगीतज्ञ जोहान सेबास्टियन बैक कर मध्य आज जन्मदिन, जहां आउ टिके पूर्वरु कहिथिली आपनकु। आज आम मन पकाउछे किंवदंती आथलेट जेसी ओवेन्स को, जे कि 1936 ओलंपिक्स रे 4 सुन्ना पदक जीति विश्व को चकित कर देथिले। सेंती लोकप्रिय गायिका सेलेना एवं प्रसिद्ध लेखिका

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहुछि।
0: पुणी थरे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपणको पार्सल रे ड्रग्स मिलिछि, लंबा बसिबे,
2: 10 लाख दियंतु, बंची जिबे।
0: सर एते कोठो
1: गोटे लिंक पठाइछि, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु, बाकी परे।
0: सर 2 लाख
3: कोन हला बापा?
0: जियो से माने कहउछंती मो पार्सल भितरु ड्रग्स मिलिछि।
1: अरे
0: काटी देला,
3: पैनिक हुआनी बापा, डिजिटल अरेस्ट भले किछि नाही, ए सब फ्रॉड।
0: फ्रॉड
3: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधीक फोन किंबा वीडियो कॉल प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनोसी टंका पठांतु नाही, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखैबे
0: त टंका हरैबे।
4: आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु, सतर्क रहंतु।
5: नमस्ते सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
6: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
5: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
6: ये कौन सा टीका है दीदी?
5: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है, और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ, अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
6: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
5: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
6: धन्यवाद दीदी।
7: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvn.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक स्वागत करुछि आपण मानक से नियारा दुनिया को जोठी ना थिला मोबाइल ना थिला इंटरनेट थिला खाली जे जे मांकर से मीठा मीठा कथा चलन तो आज धूली झाड़ी खोलिबा पूणी थारे से पुरणा सुंदर स्मृति रो पेड़ी से स्मृति जहां अमक गोटे अनन्य दुनिया रे हजे दबो सतरी जेतेबले ए कथाटी आम मन को आसे ना जेजेमांकर गप बेड़ी ताहले अमर मन पड़ी जाए पिला दिनर से सितुआ किंबा वर्षा भिजा संजर कथा जेतेबले आमे समस्त जेजेमांक चारिपटे घेरी बसी कहानी सब सुनुथिले गप सब सुनुथिले सेतेबले से दुनिया टा से समय टा आमको सबुठ सुंदर लागुथला सतरी माँ कठारू केते कोण आमे सुनुथिले केते कोण आमे सिखुथिले केतेबले माँ आमको नीति शिक्षा मूलक गप सुनुथिले जेंती चारि संगीता बुढ़ी असुरुणी कालिया बलद बा चतुर सियाली रो गप तो केतेबले पुणी आमको सुनुथिले भौतिक बा रोमांचकर कहानी जेंती गाँव मुंड बरगछर डाहाणी गप कि पुरुणा देउलर रहस्य गप ई सब गप बहुत इंटरेस्टिंग लागुथला गोटे छोट छोट गप भी आमको पिला दिने बढ़िया लगुला आईटा यही भल लगुला कहीं आम जेजे माँ ओठर आम शुणुले आंदर सुंदर कहानी भी शुणुले आम जमती धर्मपदर बलिदान है तो पोईर दुख है कि प्रभु जगन्नाथ कौन सी चमत्कार कहानी है बहुत किसी आमको शिखा को मिलूला शुणा को मिलूला जानवाक मिलूला आज आम एत आधुनिक हो जाइए सत कि सुंदर सुंदर कहानी से सब कड़े हजि जा तेज चलत से स्मृति में हजार आ गोटे सुंदर गीत आप प्ले करदे एंजय करवा

0: जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबारु बंचिबार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनि थरे जांच करंतु
1: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान रो सहित

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: थैंक यू सो मच बहुत बहुत सुंदर है कविता टी बहुत धन्यवाद आपन को सकाळ सकाळ एते सुंदर सुंदर कथा कहले बढ़िया कविता सुनैले कॉल कले बहुत बहुत धन्यवाद रहिले नमस्कार
1: मुझे हूँ आपण मान को धन्यवाद देवी ये आत्मीयतार हूँ हाथ पसारी समस्ते मत हूँ स्नेह मत अजाड़ी दे था मत धन्य कर था धन्यवाद जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ श्रोता बंधु आम समस्ते कथबार्ता जो हो ना बहुत गुड़ी कथा ता भितर बाहर के आसे जहाँ किछि आमको सिखेई थाए आउ किछि आमे निहाती अन्य मान को भी सिखेई थाउ तबे ए कथबार्ता भितर आउ गुटी कॉल भी आ जाई छि कॉल टी नै जेबा वर्तमान हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: हमारा नमस्कार
0: नमस्कार की कोतले म
2: अपने साइड नगर बसंत कोदी
0: बासंती भाउज केमती अछंती
2: भल अछि मो आपन त कुकुर बिलै कड़ी विषय रखनी मो दादी पूजा करा को मो पछ पछ मो कुकुर मान सब आइछंती
0: अच्छा ताले आजि मा मंगलंकर जत बले पणा दिया हो से माने भी पीबे ना कोन
2: आगे मो तो जाउत मो संग भति को पूजा करिया को मो पछ पछ सब तगा से मो ठिया छि रास्ता रे
0: ते रास्ता रे ठिया हो आपन फोन कर दी छंती बढ़िया कथा तो कौन पूजा करने माँ मंगला चैत्र मंगलवार अच्छा कौन पशुपक्षी चढ़ई कि व्यवस्था घर बाहर
2: पशुपक्षी
0: सब एत्ते कथा रखिछन्दी आपण अच्छा
2: आउ पानी तांका पे व्यवस्था तिनि जागा रो तिनटा जागा थुआ हेय
0: बढ़िया बढ़िया सब दिन रो काम होइए
2: आज्ञा सखाल उठला माने आगा मोर कुकुर को खाया दक देबी
0: बढ़िया आपण को भले समस्त को किछ ना किछ करबा उचित बहुत धन्यवाद आपण कॉल कले आ शेयर कले रहिली नमस्कार
2: थैंक यू रहिली नमस्कार

0: ପାଦବୃନ୍ଦ ଖବରଦାର, ଯଦି ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେବେ ପଇସା ପଠେଇବା ସମୟରେ ନାମ ଆଉ ଧନରାଶି ସର୍ବଦା ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
1: RBI କହେ, କାହାକୁ ବି ପେମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନର ସହିତ।
2: सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी। डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
5: चिक, चिक, चिक, चिक, खिच, पिच, खिच, पिच।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। चिक, चिक, चिक, चिक।
2: ये मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
2: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

श्रोता बंधु आपण माने निज मन पसंद गीत सुनुछंती ट्यून करिछंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कनेक्ट दिल से दिल तक मु कोयल आपण मानका साथी रे आजरो परवर्ती मेसेज टी अछि मो पाखरे लिखिछंती मंटू जिगरण पटामुंडे केंद्रापडारु सुनिबा पई चाहिछंती दियो दियो मंगल हुळहुळी रामायण ओडिया चलचित्ररु ए गीतटी आपण को पई मु प्ले कर देबी एन्जॉय करंतु परे परे आउ गोटे मेसेज अछि केउझर घटगांरु कुन्नी मानसी इंदु आयशा नीलिमा पिंकी समस्ते लिखिछंती मा तारिणी गोटे भजन शुणा चाहिए आपण गोटे सुंदर गीत मु प्ले कर दौर आशा करे आपण निश्चय एंजॉय करेंगे।

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहूची।
0: कोनी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिलीची, लंबा फसीबे।
2: 10,00,000 दियंतु, बंची जीवे।
0: सर एत्ते कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पाई 2,00,000 पठांतु। बाकी परे
0: सर 2,00,000
3: कोन हला बापा
0: जियो, से माने कहउछंती मो पार्सल भितर ड्रग्स मिली छी।
4: आगामी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर समय रे नूतन भोटर तालिकारे नाम सुनिश्चित करिबा पई आज ही निजर एवं निज परिवार सदस्यक नाम मैपिंग करै रखंतु। एही मैपिंग प्रक्रिया पई कोनोसे प्रकार दस्तावेज किंबा प्रमाणपत्र देबार आवश्यकता नाही। केवल voters.aci.gov.in किंबा ceoodisha.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध 2002 भोटर तालिकारे निजर ओ परिवार सदस्यक विवरणी चिन्हट करी निजर बीएलओ को प्रदान करंतु। जदि निज नाम 2002 भोटर तालिकारे न थाए, तेबे सही भोटर तालिकारे थिबा निज पिता किंबा मातांक नाम चिन्हट करि निजर बीएलओ को दियंतु। जदि पिता मातांक तथ्य 2002 भोटर तालिकारे उपलब्ध नाही, तेबे जेजेबापा किंबा जेजेमांक विवरणी 2002 भोटर तालिकारु खोजि निजर बीएलओ को देई मैपिंग कराई परिबे। अधिक सूचना पई भोटर हेल्पलाइन 1950 को जोगाजोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी।
5: आजिरो परवर्ती मेसेज टी अछि रेनबो एसएमएस रे लिखि छंति कटक किशोर नगर रु बवनचंद्र पाल ममता पाल सुनिबा पई चाहि छंति नसीब चलचित्र रु जिंदगी इम्तिहान लेती है। एन्जॉय करंतु ए गीत टिकू।

0: जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबार बंचिबार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनी थरे जांच करंतु
1: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान रो सहित

अजीब दास्ता है ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म यस शुरू हो जाई छी आपण को सहित मोर कथावार्ता आपण को मो सहित बहुत सारा डिस्कशन बहुत सुंदर सुंदर गीत सुनिबा आ ये खत्म हबो निहाती भाबरे आपण जानि छथि केते बेले जीवा पूर्व निहाती तो मु आपण को कहि कि जेपी किंतु वर्तमान शिवली सहित आपण अछि आपण सुनछि 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक को

कभी हमें भी खुशी मिली थी किसी नाम से, फिर किस्मत ने सब छीन लिया आराम से। ठीक यही बोली भापरे तांकरी क्षेत्र रे मध्य किस्मत सब किछि छड़े नीतला तांकठु तांकर नाठु आरंभ करी कि तांकर लाइफ पर्यंत सब किछि इत्ते सुंदर एक्टिंग करिवारे से माहिर थिले मीना कुमारी। तांकर प्रकृत ना थिला महजाबीन एवं परिपरि जेतेबेले से चलचित्र जगत रे पाद रखंती डायरेक्टर विजय भट्ट तांको बेबी मीना नामरे डाकुथिले। और परिपरि से बेबी मीना नारु से परिणत हुंती मीना कुमारी भावरे।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: माने पिल्ला बुढ़ा आउ भेंडा माने सहेटी कथा रे गोटिए कथा सत्ता केवल पैसा पठेबा पई क्यूआर कोड स्कैन करंती किंबा पिन एंटर करंती पैसा पाइबा पई नुहे
3: आरबीआई कहे क्यूआर कोड स्कैन करबा समय रे किंबा पिन एंटर करबा समय रे टिकिए ध्यान रे

0: अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आई।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
1: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल YouVin पर रजिस्टर करना मत भूलना।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.yuvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: हेलो
1: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहूची।
0: कोनी थारे
1: आपण डिजिटल अरेस्ट रे अछंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे
2: 10 लाख।

0: खबर दा जदी ब्रेकिंग न्यूज हबारु बंचिवार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनी थरे जांच करंतु
1: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान र सहित

आगामी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर समय रे नूतन भोटर तालिका रे नाम सुनिश्चित करबा पई आज ही निजर एवं निज परिवार सदस्यक नाम मैपिंग करै रखंतु। एही मैपिंग प्रक्रिया पई कोनोसी प्रकार दस्तावेज किंबा प्रमाणपत्र देबार आवश्यकता नाही। केवल voters.aci.gov.in किंबा ceoodisha.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध 2002 भोटर तालिका रे निजर ओ परिवार सदस्यकर विवरणी चिन्हट करी निजर बीएलओ को प्रदान करंतु। जदि निज नाम 2002 भोटर तालिका न थाए तेबे सही भोटर तालिकारे थिबा निज पिता किंबा मातांक नाम चिन्हट करी निजर बीएलओ को दियंतु। जदि पिता मातांक तथ्य 2002 भोटर तालिकारे उपलब्ध नाही तेबे जेजेबापा किंबा जेजेमांक विवरणी 2002 भोटर तालिकारु खोजी निजर बीएलओ को देई मैपिंग कराई परिबे। अधिक सूचना पई भोटर हेल्पलाइन 1950 को जोगाजोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहितरे जारी।

0: पानी सरबत घोल दही तोरणी आ ओआरएस पणा निहाती पियंतु
1: किंतु जदी पाटी सुखी जाउची बांती लागुची मुंडो बुलेबा सह शरीर रो उताप बढी जाउची ताले निकटस्थ डाक्टर खाना को जांतु
0: किंतु हां खरा दिन रे खाली पेट रे रुहंतुनी कि निसा मादक द्रव्य नियंतुनी
1: एवं गर्भवती महिला उच्च रक्तचाप और डायबिटीज रोगी खरा को बाहरंतुनी
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।

धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से ज्यादा भी है। साथ ही सूर्य जहां भी सूर्यकिरण जहां कलाणी जे धीरे धीरे सूर्यंकर प्रकोप मध्य बढ़िबारे लागिछि, आ हमको डर भी लागिलानि धीरे धीरे घर बाहर बापै, किंतु कोन करा जीव, काम को तो जीवाकू पड़िबो, काम तो करबाकू ही पड़िबो, किंतु ता पूर्वरो किछि सतर्कता अवलंबन करिवार अछि, जेमति कि हमको संगरे पानी बोतल नबार अछि, कॉटन ड्रेस पिंधिबार अछि, संगरे जदि बाइक रे जाउछन्ते हेलमेट निहाती भाबरे पिंधंतु, एवं जदि आखपाख जागरे जदि कोनोसी किछि काम अर्जेंट काम रहूछि दरकारी काम रहूछि निहाती भाबरे बाहर को बाहरंतु, नहले टिके अवॉइड करंतु, एवं संगरे छता नियंतु, ता सहित मध्य हेल्थ ड्रिंक्स पियंतु, बहुत मात्रा रे पानी पियंतु, आउ सुस्थ रहंतु, आमको सुनो थांतु केवल 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटे को था तो दिल से दिल तक।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

जिंदगी की किताब में हर पन्ना खास है, कभी खुशी तो कभी गम की मिठास है, जो समझते हैं इसका मतलब उन्हें उनके लिए हर पल एक नई शुरुआत है। साथ ही आमो पाई तो प्रति क्षेत्र में आम कि ना कि गोटे शिखी था, जमीक छोट थी जिते बड़े सेत को सिलट खड़ी आरंभ करा खाता कलम को आम आम पाठपढ़ा को सिफ्ट कर जिते बड़क कलेज लाइफ आरंभ हो जाए सांगसाथी मान सहित तो बहुत किसी मन कथा सेयर कर समय सहित ताल देखिक पर कलेज लाइफ पर जिते बड़क आम आउटे मैच्योरिटी पर जमीक आम चाकरी को जॉइन करलु कि आम कि नुआ गोटे कि गोटे बिजनेस आम स्टार्ट करने को चेष्टा करलु से आम परिचय है मोबाइल फोन सहित ये छोट जंत्र सहित से मोबाइल फोन सहित आम बर्तमान बहुत ही एक्वेंटेड से मोबाइल फोन माध्यम आम मान सुंदर भाव से शुणी पार्टी विभिन्न सांग मान सहित आम कनेक्ट हो पार्छू और छोट जंत्र बहुत किसी सुंदर सुंदर जिनस को आम सेफ कर आम पाखे छोट जंत्री पाखर आम बहुत किसी लाभ पाच आउज करने समय आम सजग हो जाऊ फेक कल्स को देखिक सजग रुचु फेक मेसेजेस हो समस्त सहित ओटीपी शेयर न करी सजग रुचु से किंतु साथी किछि वर्ष पूर्व को जदि आमे बुली कि चाहिबा ताहले आमर वर्तमान रो पीढ़ी रो समस्त स्मृति को आमे छोटो जंत्र टिरे आमे कैद करके रखि पारुछु जहा कि आमे आमो पिला बेलो को देखिले सुजोग दि आमो पाखर नथिला ता कोन कहिली फोन रो गैलरी यस सो फोन रो गैलरी रे समस्तंकर अलग अलग सब स्मृति रही एवं जेते बले आमे फ्री समय पाऊ जेते बले टिके फांका बसी थाऊ आमे आमो समस्तंकर से जो मनपसंद रो स्मृति गुडी को आमे सब ता भीतर जो सजी के रखी छु से फ्री टाइम रे बसी थिबा समय रे से स्मृति गुडी को आमे टिके से फर्द गुडी को लेउटे थाऊ एवं देखी थाऊ मध्य आ मन पकई था पुराणा दिन कथा गुड़ी को सो आज कथा समस्त को फोन रे जो फोन गैलरी रही कौन रही सब से फोन गैलरी मध्य फेरी जी।

ऐसे पुराना दिनों को मन पके बाटी किसी मीठा मीठा कथा को एक इच्छी कथा किसी गीत कार्यक्रम सिउली अच्छी आपण सहित आप शुणु 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो काटा कुआ कौन दिल से दिल तक

0: दर्शक वृंद खबरदार जदि ब्रेकिंग न्यूज हबारु बंचिवार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुणी थरे जांच करंतु
1: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान रो सहित

0: आगामी स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर समय रे नूतन भोटर तालिकारे नाम सुनिश्चित करिबा पई आज ही निजर एवं निज परिवार सदस्यक नाम मैपिंग करै रखंतु। एही मैपिंग प्रक्रिया पई कोनोसी प्रकार दस्तावेज किंबा प्रमाणपत्र देबार आवश्यकता नाही। केवल voters.aci.gov.in किंबा ceoodisha.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध 2002 भोटर तालिकारे निजर ओ परिवार सदस्यक विवरणी चिन्हट करि निजर बीएलओ को प्रदान करंतु। जदि निज नाम 2002 भोटर तालिकारे न थाए तबे सही भोटर तालिकारे थिबा निज पिता किंबा मातांक नाम चिन्हट करि निजर बीएलओ को दियंतु। जदि पिता मातांक तथ्य 2002 भोटर तालिकारे उपलब्ध नाही तबे जेजेबापा किंबा जेजेमांक विवरणी 2002 भोटर तालिकारु खोजि निजर बीएलओ को दे मैपिंग कराइ परिबे। अधिक सूचना पई भोटर हेल्पलाइन 1950 को जोगाजोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहित रे जारी।
1: हेलो
2: राजेश बाबू, मु पुलिस थाना रु कहू छी।
1: पुणी थरे
2: आपण डिजिटल अरेस्ट रे छंती, अन्य कोठरी को जानतु। एकुटिया आपण को पार्सल रे ड्रग्स मिली छी, लंबा फसीबे।
3: 10,00,000 दियंतु, बंची जीवे।
1: सर एते कोठो
2: गोटे लिंक पठाई छी, एबे प्रोसेसिंग पई 2,00,000 पठांतु, बाकी परे
1: सर 2,00,000।

साथी जदि देखा जाए आमे जेमती आमर दरकारी कागज पत्र को गोटे फोल्डर भितर साइत के रखुचु ठीक से भली भावरे आमर स्मृति सब को मध्य आमे फोन गैलरी रे सेफ करके रखि परुचु खाली सेति कि नहो आमे जीवन रो सबु ठारु मूल्यवान मुहूर्त गुडी को सुरक्षित मध्य रखि परुचु बस मझिरे मझिरे आमको टिके से बैकअप नबार अछि वायरस ठारु दूरी रहबा पई स्कैन करिवार अछि आउ अनावश्यक फोटो को इरेज करिवार अछि आ तापरे तापरे आमर फोन पूर्व परी पुनी नुवा हिजबो

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर

बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर माँ भारती की सेवा के लिए वापिस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनो सुनो एक परिवार की कहानी। डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
2: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
2: जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनीता, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ?
1: नमस्ते दीदी, आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, उसी के लिए गिफ्ट लेने आई हूँ।
0: बधाई हो, अब गिफ्ट के साथ साथ उसे HPV का टीका भी लगवा दो।
1: ये कौन सा टीका है दीदी?
0: ये टीका सर्विकल कैंसर से हमारी बेटियों का बचाव करता है और हमारी सरकार ने इसे 14 साल की लड़कियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल मुफ्त कर दिया है। मैं वहीं से तो आ रही हूँ अपनी बेटी को टीका लगवा कर।
1: टीका लगवाने के बाद कोई दिक्कत हुई?
0: नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। तुम भी आज ही अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UVN पर रजिस्टर कर लो।
1: धन्यवाद दीदी।
2: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सावधान, अंशुघात विपदजनक हो पाए
4: एगारटू तीनटा खरा को न जा छाई रुहतु
3: ओदा गामुछा छत्ता पा बोतल सांगे नवा सहित कड़ा चश्मा व्यवहार करतु
4: पानी सरबत घोल दही तोराणी ORS पणा निहाती पियंतु
3: किंतु जदि पार्टी सुखी जाउछि बांती लागुछि मुंड बुलेबा सह शरीर उताप बढ़ी जाउछि ताले निकटस्थ डाक्तरखाना को जांतु
4: किंतु हां खरा दिन रे खाली पेटरे रुहंतुनी कि निशा मादक द्रव्य नियंतुनी
3: एवं गर्भवती महिला उच्च रक्तचाप आ डायबिटीज रोगी खरा को बाहरंतुनी
5: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ओडिसा।

0: ଆମେ ସେହି ଭୂମିର ସନ୍ତାନ ଯେଉଁଠି ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢ଼ିବା ସହିତ କଲମ ଏବଂ କୃଷକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ଖୋଜୁ। ଆମ ପରିଚୟ, ଆମ ଗର୍ବ, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସବୁ ଏକ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଭାରତୀୟ।
1: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध।
0: डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आगामी स्वतंत्र सघन संशोधन SIR समय रे नूतन भोटर तालिकारे नाम सुनिश्चित करिबा पई आज ही निजर एवं निज परिवार सदस्यक नाम मैपिंग करै रखंतु। एही मैपिंग प्रक्रिया पई कोनोसी प्रकार दस्तावेज किंबा प्रमाणपत्र देबार आवश्यकता नाही। केवल voters.aci.gov.in किंबा ceo.odisha.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध 2002 भोटर तालिकारे निजर ओ परिवार सदस्यक विवरणी चिन्हट करि निजर BLO को प्रदान करंतु। जदि निज नाम 2002 भोटर तालिकारे न थाए तबे सही भोटर तालिकारे थिबा निज पिता किंबा मातांक नाम चिन्हट करि निजर BLO को दियंतु। जदि पिता मातांक तथ्य 2002 भोटर तालिकारे उपलब्ध नाही तबे जेजेबापा किंबा जेजेमांक विवरणी 2002 भोटर तालिकारु खोजि निजर BLO को देई मैपिंग कराइ परिबे। अधिक सूचना पई भोटर हेल्पलाइन 1950 को जोगाजोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांक द्वारा जनहितरे जारी।

0: दर्शक वृंद खबरदार जदि ब्रेकिंग न्यूज हेबारु बंचिबार अछि तबे पैसा पठेबा समय रे नाम आउ धनराशि सर्वदा पुनि थरे जांच करंतु
1: आरबीआई कहे कहा को भी पेमेंट कला बेले टिकिए ध्यान र सहित
2: डाक्टर बाबू 15 दिन हलाणी मो स्वामी वार्ड रे अछंती कासो ज्वर जम्मारु कमुनि काहेकि देहा हात कंटा हे गेलानी जे चिन्नी भी होउनी से भलो हेबे तो
3: व्यस्त होनी चिकित्सा चालू छि तमे तो निजे अवहेला कल अधारू औषध बंद कर देल सेति पई एबे औषध काम करू नाही
2: हेले 2 मास खाइबा परे तो तांकर कास भलो होई जैथिला
3: टीबी औषध प्रथम 2 मास खाइबा परे अधिकांश लक्षण चली जाए एतिक रे भलो हेगेला बोली भाभी की औषध बंद कर दबा ठीक नहे एहा द्वारा एमडीआर एक्सडीआर टीबी हुए जेउतरे अधिकांश टीबी औषध आउ काम करे नाही तेनो टीबी औषध आद्व अधारू बंद करबा उचित नहे खाली सेति कि नहे एति

0: चिकित्सा अधिका 9 मासरु 18 मास करिबाकु पड़े ओ भल हबाटा मध्य कष्टकर होई पड़े तबे व्यस्त होनी नियमित चिकित्सा रे रहिले भल हेबा संभावना अधिक
1: आज्ञा एथरो सबु मानी चलिबु मो स्वामी को भल करि दियंतु
2: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा सरकार